0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
1: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
1: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
1: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओं, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
1: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
1: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
1: तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
1: जॉन बील मेला
2: जी,
1: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
1: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी
1: जी। पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
1: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
2: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे।

0: क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
1: हाँ विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
0: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय, यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। ये बहुत प्राचीन तरीका था।
1: जी बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं? कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की, और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
0: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
1: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है।
0: जी
1: विमलेश जी, जरा जोन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
0: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टीवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं।
1: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
0: जी
1: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की, तो अब आपकी बारी।
0: श्रोताओ, माना जाता है कि जोन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
1: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं, तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
0: जी, फिर वहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
1: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
0: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जोन बील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जोन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जोन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
0: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।

0: आज वल्लरी बहुत उत्साहित है। क्यों? आइए जानते हैं।
1: यमन भैया, यमन भैया, कहाँ हो भैया?
2: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: भैया, खुश होने की बात तो है ही। पता है, पापा का ईमेल आया है।
2: अच्छा, क्या लिखा है?
1: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है। कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
3: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद

0: अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
1: वल्लरी, यमन और उनकी माता जी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
2: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
3: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
0: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
1: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
0: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
1: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
4: नमस्ते पापा।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
4: ठीक है।
1: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
4: बड़ा मजा आया।
1: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो सामान उठाओ अपना। हाँ, टैक्सी पे चलते हैं। आजा आजा आजा। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
0: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण, जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
1: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चौतान जी घर पर हैं क्या?
5: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
4: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी, है ना?
1: बिल्कुल ठीक पहचाना।
5: आइए, स्वागत है आप सबका।
1: धन्यवाद।
5: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा वर्मा।
1: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
2: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था। बड़ी सुंदर जगह है।
5: थैंक यू।
3: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
5: ओहो। वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
1: जी,
5: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा।
5: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
1: अरे
5: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखखेन का पर्व जो है।
1: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
2: अच्छा, तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
1: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया आई हूँ। सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
3: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल। ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
5: बेटा, ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है, ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
1: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
2: यह तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
5: थैंक यू।
1: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
5: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है, जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
1: अच्छा
2: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
5: बेटा, इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
1: जल उत्सव क्यों?
5: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।

0: अच्छा
1: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
0: हाँ।
1: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
0: जी।
2: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
1: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है,
2: तो हम भी चले।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
2: चलो चलो चलो।
3: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
4: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
5: हैप्पी संकेन।
3: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
2: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
4: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
1: अरे।
3: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
1: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
2: अच्छा।
1: वहाँ वो मंत्र पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
2: जी अंकल।
1: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
6: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
1: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
6: हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
4: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
7: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
8: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Sarabjeet Kaur with my co-anchor Amit Goyal.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद अमित जी.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ सरबजीत.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 250 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,188 के स्तर पर बंद. प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में मजबूती का रुझान और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी.

0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our listeners, views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर सूचकांक आज भी मंदी के दबाव में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 238 अंक गिरकर 77,470 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% की गिरावट से 51 अंक गिरकर 24,188 के स्तर पर दर्ज हुआ। वैश्विक परिस्थितियों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण कारोबार की शुरुआत में ही निवेशक सतर्क बने रहे। पूरे सत्र में दोनों सूचकांक गिरावट के दायरे में ही कारोबार करते नजर आए। हालांकि ऐसी एनएससी मिड कैप सूचकांक में 0.3% और एनएससी स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन नेगेटिव जोन टुडे। द सेंसेक्स डिक्लाइंड 238 पॉइंट्स और 0.3% टू क्लोज एट 77,470। द निफ्टी लॉस्ट 51 पॉइंट्स और 0.2% टू सेटल एट 24,180। Earlier, markets opened on a flat note as investors remained cautious amid geopolitical uncertainties and elevated crude oil prices. Both the indices traded with a negative bias for most of the range-bound session today. However, in the broader market on the National Stock Exchange, Mid-Cap 100 Index rose 0.3% and Small-Cap 100 Index added over 0.5%.
1: हालांकि सेंसेक्स पैक की 30 में से 21 कंपनियों में आज मजबूती दर्ज हुई। बढ़त वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व 2%, इंडिगो 1.6% और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.4% प्रमुख रहे। गिरावट वाले शेयरों में HDFC बैंक 2.1%, रिलायंस

0: तथा स्टेट बैंक लगभग 1.5% और TCS 1.3% के नुकसान से बंद हुए।
1: In the sectoral indices on the BSE, 13 out of 25 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, PSU banks dropped 0.8%, focused IT as well as IT slipped almost 0.7%, and top 10 bank index lost over 0.5%. In contrast, mid-small private banks quality tilt jumped more than 2.9%, Reality rose 1.1%, and commodities added 1%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,188 advanced, 2,021 companies declined, and 190 remained unchanged. Vishal, the Indian stock market closed lower for the second consecutive session today. What were the reasons behind today's decline?
2: Well, largely, I would say that, you know, they're staying range-bound, both the Nifty and the Sensex as well. But yes, there is a marginal decline now. There's not much positive sentiment to go on. As I've been saying time and again, the markets do operate on sentiments, and those sentiments create momentums in the market, in the both negative and the positive, you know, category as well. But over the past, you know, 3-4 days, there has not been any huge sentiment which has been created. Although, and there is this one is a big although, because the foreign currency figures which have come in, those are really positive, and that impact is seen on the status of the Indian rupee as well. So that is there, and that is going to build the momentum in the perhaps in the next few sessions. But nothing much more stronger to come by as of now. I think we should wait and watch as the market looks like is waiting and watching for the results of the June quarter as well. They've started trickling in, so far so good, but nothing extraordinary, I would say, to give that push to the market. That's one. Apart from that, the West Asia conflict, that is Iran versus US, that is something which is again flared up, and that flare up, although the crude oil prices are rising, but they're a bit steady. You know, the rise is not very sharp, and the overall sentiment in terms of, you know, both sides again confronting each other in the battleground is something which doesn't augur well for the energy sector. So there is some palpable sentiment which is there in the market, but the market is yet to try and understand whether it goes towards the negative end or it goes towards the positive end. Perhaps more positive results coming in from the June quarter, that's one. And two, as we move forward, we might see the impact of the money which has come in, the foreign currency which has been accumulated. Once that starts circulating in the system, we'll get to see a little bit more positive impact there.
0: विशाल, आपने चर्चा करी रुपए के बारे में, तो पहले मैं रुपए की जानकारी दे दूं अपने श्रोताओं को भी और आपको भी। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 21 पैसे की बढ़त से 96.24 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। अब अगर हम वापस से घरेलू शेयर बाजार की बात करते हैं, आपने कहा बाजार रेंज बाउंड बना हुआ है, ट्रिगर की आपने बात करी, क्या बाजार में, देखिए अगर हम ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, तकरीबन 2200 कंपनियों के शेयर आज पॉजिटिव में रहे, लेकिन तकरीबन 2021 कंपनियों लगभग लगभग बराबर से ही रहे, और मोटे तौर पे अगर सेंसेक्स पैक की बात करते हैं तो 30 में से 21 कंपनियां पॉजिटिव में रोज। हालांकि अगर आंकड़ों को देखें तो शायद जो सेंसेक्स के आंकड़े हैं वो वेटेज की वजह से हमको नेगेटिव में नज़र आ रहे हैं। क्या बाजार कुछ अभी जो चलने के लिए जो आप ट्रिगर की बात कर रहे हैं, वो ट्रिगर कहाँ छुपा हुआ है या कहाँ दबा हुआ है या क्यों नहीं आ पा रहा?
2: देखिए, बाजार हमेशा दो तरह के ट्रिगर्स पे काम करता है। पहला ट्रिगर आंकड़ों का ट्रिगर है, क्या कुछ बेहतरीन आंकड़े आ रहे हैं। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन के आंकड़े हों, ग्रोथ के आंकड़े हों, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स के आंकड़े हों, इन्वेस्टमेंट के आंकड़े हों, और ये वो समय नहीं है जब कुछ आंकड़े आ रहे हों या फिर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी में कोई फैसला लिया गया हो या किसी और सेंट्रल बैंक ने कोई फैसला लिया हो। दूसरा ट्रिगर जिस पे मार्केट काम करता है वो है इमीडिएट बिग इवेंट्स, मतलब क्या हलचल हो रही है देश में, विदेशों में, आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात करते रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग

0: पिछले 3-4 दिन से, बल्कि उससे ज़्यादा समय से ये मान सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास नहीं है। लेकिन आपने अलग अलग सेक्टर्स की बात की, आपने अलग अलग सेगमेंट्स की बात की, अगर उस लिहाज से थोड़ी सी फौरी तौर पर नज़र डाल के देखें तो समझ आएगा कि आज का जो सेशन था उसमें IT और मेटल्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमज़ोर रही, जिस वजह से मार्केट पर असर दिखाई दिया। उसके अलावा बैंकिंग की अगर बात करें तो आज निफ्टी बैंकिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में लगभग मेरे पिछले कुछ दिनों के मुकाबले देखा जाए तो सबसे ऊंचे स्तर पर गया था। लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस की तरफ नज़र डालें तो जो बैंकिंग सेक्टर के जो कई बड़े प्लेयर हैं उनमें से एक दो की परफॉर्मेंस कोई इतनी खास अच्छी नहीं थी। लेकिन वहीं फिर अगर उसके बनिस्बत थोड़ा सा अगर जून जो क्वार्टर है उसके आंकड़ों की नज़र उसकी तरफ देखें तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। तो वो एक जिसे एक स्पार्क जिसे कहा जाए, चिंगारी जिसे कहा जाए, वो चिंगारी अभी शायद दिख नहीं रही है, कहीं दबी हुई है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और 2-4 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई ज़्यादा वॉलीटिलिटी मार्केट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट 4 दिन पहले 5,000 अंक ऊपर गया था और आज जो है 2,000 अंक नीचे चला गया है। लगभग 100-200 अंक इधर से उधर हो रहा है, और वो भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं हो रहा है, कभी कहीं, कभी ऊपर, कभी नीचे।
1: तो क्या ये माना जाए कि बाजार में मतलब भरोसा तो है, लेकिन वो भरोसा अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं जगा पा रहा?
0: जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जो बाज़ार के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सब इंतज़ार कर रहे हैं, शायद टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, आंकड़ों को पढ़ रहे हैं। जून क्वार्टर के आंकड़े जो आ रहे हैं उनकी तरफ नज़र है, सरकार की जो पॉलिसीज़ नीतियाँ जो है उनके क्या फ्यूचर इम्पैक्ट हो सकता है उस पर नज़र है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें किस तरह का मोड़ आ सकता है उस पर एक नज़र है।
1: इसके आपने बात करी सरकार के जो नतीजे हैं, देखिए सरकार ने दबे तौर पर ही या सीधे सीधे ना सही मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखते हुए उन्होंने MSME के लिए ECLGS स्कीम वापस से लागू करी जो कोरोना के समय पर लागू की गई थी। क्या इस तरह की चीज़ें, ब्याज दरें लगभग लगभग अपने जगह पर स्थिर हैं या उसमें कहीं ना कहीं और गिरावट ही है? बैंकों ने भी अपने ब्याज दरों में एक आध बैंक ने कुछ 5-10 पैसे का ज़रूर इजाफा किया है, अदरवाइज नहीं है। क्या ये सारी चीज़ें उद्योग जगत के लिए या जो हमारे मझोले स्तर हैं MSME सेक्टर है जहाँ से बड़ी मात्रा में हमको रोज़गार भी मिलता है और उत्पादन भी मिलता है, उनको रिवाइव करने की एक सधी हुई का प्रयास है जिसका असर देखने को मिलेगा? आपने बात करी कि पहली तिमाही के बहुत सकारात्मक या बहुत उम्मीद वाले नतीजे नहीं आ पाए, ऐसी स्थिति में ये नतीजे कुछ या ये कदम जो हैं वो कुछ स्पार्क पैदा करने में सक्षम होंगे?
0: जी बिल्कुल, और ये एक इसे मैं 2-pronged strategy कहूँगा, क्योंकि केवल और नतीजे सकारात्मक ज़रूर है लेकिन वही आपने कहा कि वो चिंगारी नहीं पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक 2-pronged strategy है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सरकार की जो योजनाएँ हैं उस पर बाज़ार की नज़र ज़रूर है, और MSME सेक्टर को इस तरह का और बढ़ावा देना, इस तरह की स्कीम्स लेके आना, उसको ना केवल डोमेस्टिक लिहाज से बल्कि हमको इंटरनेशनल नज़रिए से भी इसको देखना पड़ेगा। हमने हाल फिलहाल में कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं अलग अलग देशों के साथ, यानी कि हम अपना सामान बाहर भेज पाएँ, हमारे सामान की वैल्यू बाहर ज़्यादा हो, और उसके लिए MSME सेक्टर एक बैकबोन की तरह काम करता है, ना केवल इंटरनल सप्लाई के लिए बल्कि हम जब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसके लिए भी, तो उसको बढ़ावा देना लाजमी है, और इसीलिए सरकार की तरफ से बार बार इस तरह का इंटरवेंशन होता है ख़ासतौर पर MSME सेक्टर के लिए। तो उसके नतीजे भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, बहुत जल्द से मेरा मतलब 3-6 महीने का समय हमें लेकर चलना चाहिए।
1: एक चीज़ और संक्षेप में यहाँ आपसे मैं जानना चाहूँगा, MSME सेक्टर के लिए इतनी बात करी, ब्याज दरें लगभग लगभग अपनी जगह पर स्थिर हैं, और अब वो कहाँ मानसून भी शुरुआती लड़खड़ाते कदम के बाद कहीं ना कहीं सधा हुआ नज़र आना शुरू हो गया है, उसके सेक्टर में थोड़ी सी शुरुआती कमी नज़र आई थी, ये सारे सेक्टर अभी भी मिलके वो स्पार्क जगाने में क्यों नहीं सक्षम हो पा रहे?
0: देखिए क्यों का जवाब तो अमित जी थोड़ा मुश्किल नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन क्यों का जवाब बहुत स्पेकुलेटिव हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हालांकि आपने मॉनसून का जिक्र किया, मुझे लगता है कि थोड़ी सी जैसा कि आपने कहा कि शुरुआती दौर में मानसून लड़खड़ाई ज़रूर है, अब थोड़ा सा ज़रूर जैसे कहा जाए पटरी पर मामला है, लेकिन डेफिसिट जो है उसको भी कवर करना ज़रूरी रहेगा, और मानसून हमारे देश में खासतौर पर कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, और कृषि क्षेत्र की ग्रोथ से और भी कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा।

0: इसीलिए मैंने कहा कि सरकार की जो पॉलिसी होंगी, सरकार के जो फैसले होंगे, उन पर जरूर इन्वेस्टर्स की नज़र पैनी बनी रहेगी, क्योंकि कदम दर कदम जो पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा सा डायनेमिक जिस तरह से रखा गया है, उसी डायनेमिज्म की जो उम्मीद है वो शायद बाज़ार को, वो शायद इन्वेस्टर्स को हमेशा हर सेक्टर में बनी रहती है, क्योंकि बाज़ार की उम्मीद हमेशा रहती है कि अच्छा कहाँ मिलेगा।
1: चलिए उम्मीद करते हैं कि जो मानसून सत्र जो आमतौर पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं धीमा माना जाता है, उसके बाद दूसरी तिमाही के बाद नतीजे बाज़ार से भी और कंपनी जगत से भी अच्छे नज़र आएंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: नज़र डालते हैं एशियाई शेयर बाज़ार पर। एशियाई बाज़ारों में आज मजबूती का दौर रहा। ताइवान का ताइएक्स 4.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.5%, जापान का निक्केई 3.3%, चीन का शंघाई कंपोफिट सूचकांक 0.8% और सिंगापुर स्ट्रेट साइंस सूचकांक 0.5% की बढ़त से बंद हुए। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 0.5% की गिरावट भी नजर आई। विशाल, अगर पूरे तौर पे देखें एशिया और अमेरिका और अपने घरेलू बाज़ार को, शेयर बाज़ार की अगर हम बात करें, हमारे बाज़ार में कहीं ना कहीं

0: सिंगापुर स्ट्रेट टाइम सूचकांक आधा प्रतिशत की बढ़त से बंद हुए, हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में आधा प्रतिशत की गिरावट भी नजर आई। विशाल, अगर पूरे तौर पर देखें एशिया और अमेरिका और अपने घरेलू बाजार को, शेयर बाजार की अगर हम बात करें, हमारे बाजार में कहीं ना कहीं मोटे तौर पे, चाहे अंकों के तौर पे, आंकड़ों के तौर पे गिरावट नज़र आई, एशियाई बाजारों में लेकिन वहीं वो एक ठीक ठाक मजबूती नज़र आ रही है। क्या जो मिडिल ईस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, क्या हम मान चुके हैं या सारी अर्थव्यवस्थाएं मान चुकी हैं कि ये तो अभी थमने वाला नहीं है, लंबे समय तक चलेगा, उसको हमने एडजस्ट कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया और अब उसके साथ आगे बढ़ने के लिए सब तत्पर हैं, या अभी भी बाजार इसके प्रति सेंसिटिव तो है लेकिन ओवर सेंसिटिव नहीं है?
1: देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि इस मसले पर बाजार सेंसिटिव भी रहेगा और ओवर सेंसिटिव भी रहेगा। अगर आपको दो चार पाँच दिन या हफ्ता, एक हफ्ते की ट्रेडिंग नंबर्स में अगर उस तरह का इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब भूल गए हैं या सब ने मान लिया है कि इसके साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि वो संभव नहीं है। एनर्जी सेक्टर में ऐसा संभव नहीं है कि आपके जो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग जो बास्केट है, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहाँ इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। ऐसा नहीं है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलते रहे हैं और लगभग हर कुछ साल बाद कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन इस स्तर का कॉन्फ्लिक्ट और इतना लंबा उसे चलना, और ख़ास तौर पे ऐसी स्थिति पे पहुंच जाना जहां पे कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा हो, यहां केवल ऑयल प्रोडक्शन की बात नहीं है, यहां पे सप्लाई चेन की भी बात है, इसका सीधा असर सप्लाई चेन पे दिख रहा है। तो वो जो सप्लाई चेन है, उसका असर हर इकोनॉमी को, दुनिया की हर जो अर्थव्यवस्था है उसको, हर देश जो है, हर बाजार जो है उसको झेलना पड़ेगा। हाँ, यहाँ मैं आपसे सहमत हूँ कि कुछ जिन्हें कहा जाए कि समझदार देश या समझदार अर्थव्यवस्था, जिनमें से हम भारत को एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, उन्होंने रास्ते ज़रूर ढूंढे हैं और एक तरीका ज़रूर ढूंढा है कि हम किस तरह से माफ़ कीजिएगा, किस तरह से शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में इस तरह की जो मुसीबत है उससे निपट सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसका समाधान निकालना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी निकाला जा सके उतना बेहतर है।
2: All right, moving on to the next big story of the day. US President Donald Trump has announced a 50% tariff on a range of Canadian imports, accusing the country of continuing to discriminate against American products. The White House said the new duties will take effect in 30 days. US President Trump's latest move has led to fears of a deepening trade war between the two close allies, as the relationship between Trump and Canada's Prime Minister Mark Carney continues to deteriorate. Vishal, what could be the impact of such an announcement on stock markets worldwide?
1: Well, the tariff war unleashed by President Trump has had a lot of impact on markets across the world, economies across the world as well. And, these are fresh salvos in that conflict, the trade tariff conflict. But looks like, Canada has also made it very clear earlier that they're not going to bow down to any, unrealistic demands or any undue pressure as well. But both sides largely understand one aspect also, that they will require each other. They are neighbors and they've been close trading partners over decades and centuries as well. So something which they can't wish away. There is always a meeting ground, and hopefully both sides will reach that meeting ground. But in terms of impact, I'm pretty sure that there will be some, negative impact on the markets, specifically, in US, in Canada, and in European markets as well. But it's unlikely to have too much of a bearing on Asian markets and specifically us out here in India.
0: नज़र डाल लेते हैं कुछ और खबरों पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मकदूनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना के साथ बातचीत में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं, साथ ही आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, बायोटेक्नोलॉजी, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि

0: टॉपिक है, वापस से वही $90 के आसपास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये अभी आपके हिसाब से, ठीक है स्पेकुलेशन की बात नहीं, लेकिन एक विशेषज्ञ के तौर पे आप कहाँ देखते हैं ये कितना अभी हमारे दर्द का कारण बन सकता है? दूसरा, इसी के साथ साथ आमतौर पर ऐसे देखा था, डॉलर मजबूत होता है सोना गिरता है, उधर डॉलर भी मजबूत है लेकिन सोने ने भी धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ानी शुरू करी है, पहले तेल फिर सोना।
1: जी बिल्कुल, तो पहले तेल की बात करते हैं, तेल पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स चल रही हैं मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान और अमेरिका के बीच, मुझे लगता है कि ये जो चाल अब क्रूड ऑयल के ऊपर की तरफ चली है वो थोड़े दिनों तक बरकरार रह सकती है और वो दर्द का कारण जरूर बन सकता है।
0: $100 के ऊपर तो नहीं जाएगा,
1: ये नहीं कह सकता कि नहीं जाएगा, लेकिन उम्मीद तो हम सब करेंगे कि 100 या 95 से भी ऊपर ना जाए। और रही बात सोने की, तो आपने सही कहा, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है, लेकिन इस वक्त वो जो दोनों हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स पे दोनों चीज़ें काम कर रही हैं, डॉलर और सोना। लेकिन सोने को लेकर मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि सोने में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल सकता है और उस पर जरूर।
0: लगभग सभी धातुएं जो है काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, ये कुछ चीज़ें क्या ये स्वाभाविक है या कुछ और भी वजह आपको नज़र आती है?
1: अभी हमारे पास समय कम है, हालांकि ये एक बहुत बड़ा और बहुत वृद्ध टॉपिक है, इस पर चर्चा जरूर की जा सकती है, लेकिन हाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त सभी धातुएँ एक मजबूत स्थिति पर खड़ी हैं और उनका रिएक्शन अब मजबूती के ग्राउंड से ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ मुझे जाता नहीं दिख रहा।
0: चलिए विशाल कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा हमारे श्रोताओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
2: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 250 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,188। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज। And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट फेज शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स को पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने की एक पहल है। वेब्स ओटीटी के अंतर्गत माई वेब्स प्लेटफॉर्म पर आधारित इस चैलेंज में लोगों को अपने जिलों की अनोखी कहानियों और सांस्कृतिक विरासत को दिखाने वाले छोटे वीडियो बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रतिभागी 1 से 31 अगस्त के बीच वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर माई वेब सेक्शन पर 1 से 3 मिनट के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इसे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भारत के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बैठक में WTO के सदस्य देशों ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, सीमा शुल्क प्रणाली में सुधार और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के प्रयासों की सराहना की। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी

0: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार चार श्रेणियों में दिया जाता है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुप्पुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चीर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युशा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुँच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट

0: पर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल खरीफ की बुआई की प्रगति, मानसून की स्थिति, उर्वरक और बीज की उपलब्धता तथा अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चौहान ने अधिकारियों को कम वर्षा वाले जिलों की निगरानी करने और राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयंबटूर और तिरुपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयंबटूर में जीके एनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुपुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET-related issues, despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET-related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at

0: ஒழித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது நினைஞ்சு மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரசாந்த் குமார். सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है. नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की. मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है. नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है. इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं. इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जनता को परेशान किया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की. उन्होंने कहा कि सरकार नीट मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक चर्चा के बजाय प्रदर्शन का रास्ता चुना. श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों की हर वास्तविक चिंता पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही. ब्यौरा हमारे संवाददाता.

0: संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिड़ला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day yesterday following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case yesterday. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House complex yesterday. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders.

0: இதுவரை இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் பண்டிட் மல்லிகார்ஜுன் மன்சூர் மற்றும் சுபீர் சென் ஆகியோரது பாடல்களை கேட்டீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரசாந்த் குமார். सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध दर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जनता को परेशान किया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उपराष्ट्रपति सीपी

0: कृष्णन आज तमिलनाडु के कोयंबटूर और तिरुपुर के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधा कृष्णन कोयंबटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली का दौरा करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में बनने वाले अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका कड़ी सैनिक कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन यदि उसने परमाणु गतिविधियां दोबारा शुरू की या हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला किया तो अमरीका इसका कड़ा जवाब देगा। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन ने कहा है कि मौजूदा हालात में देश का नेतृत्व सर्वोच्च नेता के मार्गदर्शन में काम कर रहा है और ईरान अपने फैसले मजबूती से लेता रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 दिनों में असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में तेज बारिश होगी। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
2: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
1: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day yesterday following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case yesterday. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House complex yesterday. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said, during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in the future examinations across the country. Delhi police released all opposition leaders, including senior Congress leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, after they were detained on the protest site near Lok Kalyan Marg. They were protesting over the NEET paper leak issue. BJP yesterday criticised Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi for staging a protest at Lok Kalyan Marg, saying that the conduct displayed by him is entirely unbecoming and condemnable. Talking to the media in New Delhi, BJP President Nitin Naveen said that the incident is unfortunate and termed it as a dark day in India's political history. He also said that when the government accepted the conditions of the Congress on the NEET paper leak issue,

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोप्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों देशों के व्यवसायियों, निवेश एजेंसियों और उद्योग जगत से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उपक्रम और स्थानीय मूल्य संवर्धन के माध्यम से साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोप्जे में मदर टेरेसा स्मारक जाएंगे। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जाजोन्स्का दावाकोवा भी उनके साथ होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोप्जे संग्रहालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करेंगी। वे विश्व विरासत स्थल होरिड लेक भी जाएंगे। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे तिरुपुर के ओजाशी में लिंगवेश्वर शिव मंदिर का भी दर्शन करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। सरकार ने कहा है कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58 करोड़ 63 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं।